0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

0: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: सुनो
4: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इस शेर का अर्थ ये है, या यूं कहें कि इन खूबसूरत लाइनों का मतलब ये है कि जहां एक सम्मान है, आत्म सम्मान की बात है, खुद की पहचान की बात है और समाज में एक अलग जगह बनाने की पहचान है, ये खूबसूरत लाइनें यही कहती हैं। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, जहां ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। वैसे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, जिसे हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र के ऐसी दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, जो कि सीनियर कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे एक अनुभव के साथ आप आते हैं। और जितना अनुभव सर का है, तो उस अनुभव को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में, यानी कि इन बातों के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ, द पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टार न्यूज, समय, बहुत जगह सर ने काम किया, तो बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ आज वो शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव आप रहे हैं, और आपने जो सेवाएं दी हैं वर्ष अक्टूबर 2019 से लेकर 2025 तक, यानी कि सितंबर 2025 तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो इस अनुभव के साथ आज की हमारी शख्सियत हमारे बीच है। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
7: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: माफ कीजिएगा सर अगर मैं कहीं कुछ तारुफ में कुछ कम बात रख पाया, क्योंकि बहुत बहुत बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते, लेकिन जितना समय मिला मैं आपके बारे में कह पाया।
7: नहीं, तारुफ आपने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया।
4: ज्यादा, ये तो जरा नवाजी, प्यार है सर आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है शारदा यूनिवर्सिटी के इस आंगन में, प्रीमिसेस में आकर?
7: नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अंदाज नहीं था कि कैंपस इतना बड़ा है और इतना वाइब्रेंट।

0: है। तो जब मैं पहले आया तभी मुझे लगा कि अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहा है, तो देख के अच्छा लगा।
1: वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थोड़ा मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप मुझे मेरे लिसनर्स को बताएं, मेरे स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का एक स्कूल है जहां स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है तो वो उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि ये जो सफर आपका रहा है कैसा सफर रहा, सुहाना सफर रहा या अड़चने भी बहुत ज्यादा आई, और उन अड़चनों को पार करते हुए आप आज समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं, जिंदगी जैसे चलती है वैसे ही चली, और मुझे याद है कि मैं 1984 के आसपास मैं बैंक में था, और बैंक में मैं थोड़े दिन आगरा में काम किया, और उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चला आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी स्कीम होती थी, और ये बात है 85 की
1: जी,
0: और वहाँ से फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा। 91 में मैं चला गया था बिहार इकोनॉमिक टाइम्स में
1: जी, जी।
0: फिर उसके बाद मैं लखनऊ फिर आ गया आनंद बाजार के साथ
1: जी,
0: और फिर मैं 95 के आसपास दिल्ली आ गया था, और तब से मैं दिल्ली में हूँ। तो उसमें हमने पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ईटीवी, स्टार न्यूज़,
1: ओह ग्रेट,
0: और न्यूज़ एक्स, फिर उसके बाद फर्स्ट पोस्ट और गवर्नेंस नाउ जो फोर्टनाइटली थी
1: जी।
0: तो इस तरह के मैगजीन्स, मैगजीन और डिजिटल जो नए नए उस समय आए थे, हमारे ख्याल से फर्स्ट पोस्ट पहला डिजिटल इफेक्टिव एक आउटलेट था
1: जी।
0: तो उसमें काम करता रहा, और फिर अचानक 2019 में मैं भारत के राष्ट्रपति का
1: मैं इसके बारे में जरूर जानूंगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन का खजाना है, और मैं नहीं चाहता कि कम समय में ये बातें हो जाएं। मैं जरूर सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो आपने मुझे बताया कि बैंक सेक्टर में आप काम कर रहे थे, ये सवाल आता है, और जिस तरीके से आपने अपनी लाइन चेंज की, क्या उस वक्त पत्रकारिता की डिग्री आपके पास थी या आपने फिर वो पढ़ाई की, या अनुभव के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, इसके बारे में बातें होंगी जरूर। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, यानी कि मैं म्यूजिक की बात करना चाहूंगा। आपकी मुस्कान वाकई बहुत अच्छी है, और मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि आप खुश रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं म्यूजिक की बात आपसे करता हूँ कि जब स्ट्रेस आपके आसपास होता है या ज्यादा आप खुश होते हैं तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं मेरे लिसनर्स को?
0: कोई स्पेसिफिक गाना तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो कि, और ओल्ड सॉन्ग्स हैं,
1: ओल्ड सॉन्ग्स,
0: क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक एटर्नल वैल्यू रहती थी। तो अगर आप कोई भी सॉन्ग ले लें, कैफी साहब का या आप शैलेंद्र का, तो वो सॉन्ग्स ऐसे थे जो कि सुनने में अच्छा लगता था।
1: चलिए, बॉबी फिल्म का शैलेंद्र साहब की रचना से सजा हुआ गाना मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आप कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ आज एक शख्सियत जुड़ रही है, आप है अजय सिंह सर जी, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं, यानी कि 4 दशकों के अनुभव के साथ आते हैं। तो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनते हैं, और जो सवाल मैंने सर के साथ किया है उसका आंसर जानेंगे जरूर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि शारदा विश्वविद्यालय का SSMFE यानी शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का ये एक सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जहां सीखने सिखाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब आप यहां आते हैं तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि सीखेंगे तो सही लेकिन जब अनुभवी गुणी लोग आपसे जुड़ते हैं तो उनके साक्षात्कार को सुनके या उनके नजदीक बैठकर बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मीडिया क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें नाम आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया की ही बात हो रही है तो हमारे साथ हैं अजय सिंह जी जो कि मीडिया इंडस्ट्री से आप आते हैं, 4 दशकों का अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव अलग अलग चैनल के साथ। तो सर एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सवाल मैंने आपसे किया था, सवाल मेरा ये था क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप बैंक सेक्टर में काम कर रहे थे। मैं ही क्या सर, किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि बैंक सेक्टर से निकलने के बाद आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। क्या उस वक्त पत्रकारिता क्षेत्र में आपने कोई पढ़ाई कर रहे थे या डिग्री हासिल थी या एक जुनून था, नहीं मुझे मीडिया करना है, तो इसके बारे में प्लीज बताइए।
1: नहीं, मेरे फैमिली में था, पत्रकारिता का एक कल्चर भी था,
0: खून में था ये
1: जी। तो एक तो वो था और दूसरा मैंने M.Com किया था PHU से
0: जी।
1: तो वहाँ से एक ये जो नेचुरल वो होता है उसमें हम बैंक में गए और बैंक में हम, लेकिन बैंक में हम, हमारा कोई मन नहीं लगा। हम तीन महीने रहे होंगे मुश्किल से।
0: सरकारी जॉब थी उस वक्त?
1: सरकारी जॉब थी।
0: हाँ, क्या बात है।
1: तो वो छोड़ के फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय एक ट्रेनी स्कीम आता था।
0: अच्छा।
1: तो मैं वहाँ चला गया और उससे हमने कानपुर में, शुरू में हमारी पोस्टिंग हुई, करीब 7-8 महीने मैं वहाँ रहा कानपुर। उसके बाद मैं फिर लखनऊ आ गया। तो जब लखनऊ आया तो मैं वहाँ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया में, और पत्रकारिता में मैं हमेशा रिपोर्टिंग साइड में रहा
0: जी, ऑन ग्राउंड रहे
1: और हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहा। तो हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहने से ये हुआ कि हमें घूमने को बहुत मिलता था या चीजें, हाँ चीजें जो जमीन पे हो रही हैं उसको जानने का मौका मिलता था। तो वो मैंने किया 91 में मैं बिहार चला गया और बिहार में मांग के गया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में उस समय गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही वो पार्ट है लेकिन अपॉइंटमेंट अलग लेटर होता है उसका
0: जी।
1: तो मैं 91-93 इकोनॉमिक टाइम्स में रहा बिहार में और फिर उसके बाद आनंद बाजार ग्रुप के साथ आ गए,
0: बड़े-बड़े चैनल्स के साथ, आपने
1: टेलीग्राफ के साथ आए, फिर लखनऊ में आए।
0: लखनऊ,
1: हाँ, तो लखनऊ से फिर मैं दिल्ली आ गया।
0: ओके सर, आपने जिक्र किया कि जो मैं समझता हूँ कि जो एक टर्निंग पॉइंट रहा आपका, बैंक सेक्टर से निकलकर आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आप बहुत बड़ी बात हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि उसमें ट्रेनिंग का एक पार्ट आपने एक आर्टिकल देखा, पढ़ा, अप्लाई किया। तो ये जो प्रोसेस आज के समय में जैसे निकलती है वैकेंसी की, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग की हमें एक आवश्यकता है, तो उस समय भी ये हुआ करता था लेकिन शायद जागरूकता की कमी होगी या जिनके पास अवेयरनेस थी तो वो ज्वाइन कर गए आपकी तरह। तो क्या कहना चाहेंगे आपको अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में?
1: देखिए, पत्रकारिता में वैसे तो सच बताएं तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जो देखते हैं और फिर आप लिखते हैं,
0: क्या बात,
1: और जब डेस्क पे वो एडिट होता है तब आप ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। लेकिन 85 वगैरह में कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे और कोई फॉर्मल एक एजुकेशन पत्रकारिता की, एक दो इंस्टीट्यूट थे जो कि उसको लेके चलते थे, पर टाइम्स ऑफ इंडिया का था।
0: अच्छा,
1: टाइम्स ऑफ इंडिया के पास था, हाँ, ट्रेनिंग स्कीम जिसमें आपके बहुत लोग आए, MJ अकबर वगैरह सब लोग उसी में आए, SP सिंह जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के, उदयन शर्मा, इस तरह के बहुत लोग आए थे जो कि उसी से आए थे। लेकिन हमारा वो नहीं था, वो ट्रेनिंग जो था वो उनका दिल्ली का था
0: जी,
1: बॉम्बे और दिल्ली का था,
0: लखनऊ में नहीं,
1: हमारा लखनऊ में था
0: जी।
1: तो लखनऊ में ऑन जॉब ट्रेनिंग वो देते थे और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, फिर आपको स्टाफ में रखा जाता था, फिर उसके बाद, और सीनियर्स होते थे जो गाइड करते थे।
0: बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत सच्ची और अच्छी बात आपने कही है कि गाइड करते थे, मार्गदर्शन आपको मिला। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें सर, हम ये महसूस करते हैं कि मुझे अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं वही आने वाले ट्रेनी के साथ करूंगा, और अक्सर हमने ऐसा देखा भी है। लेकिन जब आप उस दौर से निकल कर आ रहे थे या आए हैं, तो उस समय को और आज के समय को कैसे नाप तोल करते हैं, कितना परिवर्तन आ गया सर मीडिया इंडस्ट्री में?
1: नहीं, मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गया है। मैंने तो टाइपराइटर से शुरू किया था
0: जी।
1: मैं मेरे पास रिमिंगटन का एक टाइपराइटर होता था, और मुझे याद है कि आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, और रथ यात्रा के बाद वाली यात्रा थी। रथ यात्रा में तो वो अरेस्ट हो गए थे बिहार में, लेकिन जब वो यूपी में घुसे तो मैं उनके साथ साथ चल रहा था
0: जी।
1: तो मेरे गोद में टाइपराइटर रहता था और उसमें मैं लिखता था, और उस जमाने में फैक्स आ गया था, तो फैक्स से मैं स्टोरी फाइल करता था। तो वहाँ से लेके आज तक चीज़ें बहुत बदल गई हैं। मुझे याद है बरेली में एक बार दंगे हो गए
0: जी,
1: और मैं वहाँ पे गया एज ए रिपोर्टर। ये बात है शायद 88 की
0: जी।
1: तो उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय फैक्स वगैरह नहीं था।
0: अच्छा, उस समय तक नहीं आया?
1: नहीं, नहीं आया था। तो टेलेक्स के लिए मैं गया, वो CTO होता था
0: जी,
1: सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस
0: जी।
1: तो CTO पे मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका टेलेक्स से हम भेज सकते हैं? तो टेलेक्स चलता नहीं था, तो मतलब हम लोग को भाग के आना पड़ता था। 91 में पीलीभीत में कुछ सिखों को बस से उतार के मारा गया, वो स्टोरी मैंने ब्रेक की। लेकिन मुझे 2 दिन बाद लौट के आना पड़ा, और लखनऊ में आके मैंने वो स्टोरी फाइल की, फिर वो गया दिल्ली और तब वहां पे छपा। तो हमारे पास टाइम गैप 2 दिन होता था, अब तो 1 सेकंड का नहीं है।
0: और 1 सेकंड भी अगर आपने डिले किया तो आपका सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो उस न्यूज के साथ आगे बढ़ जाता है।
1: हाँ।
0: और दूसरी जगह शायद वो न्यूज अगर डिले हो रही है तो वो बासी रूप में हमारे सामने आ रही है।
1: हाँ,
0: तो ये आपने परिवर्तन कहीं ना कहीं देखा।
1: टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया। टेक्नोलॉजी ने देखिए,
0: लिहाज से मैं आपसे जरूर जानना समझना चाहूंगा सर कि कितना सिद्धांतों के साथ समझौता किया जा रहा है। आज आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि हम उस दौर से निकल कराएं जहां हमने बहुत गहराई से काम किया है, शिद्दत से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और आज के समय में हम देखते हैं कि वो सारी चीजें नहीं है। आज के समय में हम ये देखते हैं कि सर एक यूट्यूबर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, एक इन्फ्लुएंसर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके एथिक्स पता नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ी चिंगारी भड़क सकती है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत सवाल आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया, तो यहां पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है इसको हम करेंगे। जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया कि आप रेट्रो यानी कि पुराने गानों को अपने दिल के आसपास रखते हैं, और शैलेंद्र साहब का जिक्र किया, तो क्यों ना मैं एक और गाना उन्हीं के पिटारे से निकाल कर लेकर आता हूं आपके लिए। तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर आपके लिए सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर। दोस्तों आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत एक अच्छे अनुभव के साथ आप आते हैं और उस अनुभव को ऐसे गुणी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर आप बैठते हैं, संगत करते हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है और बहुत कुछ आप हासिल करते, आप समाज में एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 दशक के अनुभव के साथ, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं अजय सिंह जी। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था, मैं उसको अब दोहरा देता हूँ क्योंकि कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े होंगे। हमने बात की थी कि सिद्धांतों की, उस समय के जो सिद्धांत थे, आज के समय में जब चीज़ों को आप देखते हैं तो बहुत परिवर्तन नज़र आया होगा, ज़मीन आसमान का परिवर्तन होगा। आज के समय में जब हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, सेकेंड्स में बातें आगे तक चली जाती हैं। वहीं यूट्यूबर हैं सर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको शायद कुछ मालूम हासिल नहीं है, कुछ ऐसा गलत अगर वो प्रेषित कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे सर?
1: देखिए, एक चीज़ तो मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहे कि पास्ट में हम बहुत अच्छा और बहुत वैल्यू बेस्ड लेके चलते थे और नया जनरेशन वैल्यू बेस्ड नहीं है। हमें लगता है कि जितना पास्ट में जो था उससे नया जनरेशन हमेशा अच्छा होता है
0: जी।
1: तो हम पास्ट बहुत अच्छा था, नया ख़राब है, ये इनमें हम बिल्कुल नहीं हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको हम सच बताएं तो आप देखिए, तो पहले के टाइम में भागलपुर रॉयट्स हुए थे, भागलपुर रॉयट्स को पब्लिक में आने में महीनों लग गए क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला,
0: नहीं पता चला वो सही।
1: और जब रिपोर्टर वहाँ गया तो वो फील्ड में लोगों को मार के वहाँ पे खेती हो गई थी।
0: जी, जी।
1: आज के दिन ये संभव नहीं है।
0: नहीं।
1: तो अगर यूट्यूबर एक ये कर देता है, वो ट्रेंड जर्नलिस्ट नहीं है और वो आपके लिए ये मुश्किल करता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये घटना यहाँ हुई है, तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने ये तो कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर उसके हाथ में कैमरा है, स्मार्टफोन है, तो वो चीजें लेके और आपको दिखा देगा। अब रही बात उसकी कि उसमें इथिकल सवाल और ये सब है, ये सवाल पहले भी थे, ये सवाल आज भी है
0: और आगे भी रहेगा
1: और वो आगे भी रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पत्रकारिता में होने से या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन में होने से, हम आपको बता दें कि आप इस देश में अब रॉयट्स आसानी से नहीं होते हैं। अगर कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी इनजस्टिस होता है, तो लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग जानते हैं, वो बोले ना ये अलग बात है। तो अब वो चीज खत्म हो गई है। तो टेक्नोलॉजी ने जहां पे आपको इम्पावर किया है, वहां पे उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट्स आप डील कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को डील चाहिए भी। हमारा कहना ये है कि जो पत्रकारिता का एसेंस था, जो पहले था, वही आज भी है
0: जी।
1: और सच बताएं तो नए लड़के जब मैं देखता हूं तो मुझे उन पे ज़्यादा विश्वास होता है। हमें लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं एंड दे आर वेरी गुड। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो बात का जनरेशन, हाँ उसके लिए चैलेंज हो गया है और वो चैलेंज इकोनॉमी की वजह से हुआ है। क्योंकि आप देखिए तो जो न्यूज़ प्रिंट की इकोनॉमी जो हम लोग के टाइम में थी, वो इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि मतलब हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन है और पैसा वो देता है कि नहीं। तो एक मीडिया सेक्टर में, पूरे मीडिया सेक्टर में वो एक सीरियस प्रॉब्लम आई है जिससे कि डील कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है, जो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्शन किया है वो है डिसरप्शन।
0: चूंकि बात बहुत अच्छी आप कर रहे हैं सर, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, मेरे श्रोता भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सर, कोई अगर आपकी तरफ से आपके अनुभव के आधार पर कोई आप एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, दिशा निर्देश आपके ये रहें कि अगर आपको मालूमात नहीं है तो उस पर बढ़ चढ़ कर ना बोलें, क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है और बात बिगड़ सकती है और जब न्यूज़ आगे फैल जाती है तो दिक्कतें परेशानियाँ भी, यूँ कहें कि वो पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से क्रिएट हुई थी। फेक न्यूज़ भी आज के समय में बहुत ज़्यादा है, चैनल पर उसको वेरीफाई किया जाता है, तब बड़े बड़े चैनल्स उस पर आगे अपनी बात रख पाते हैं और पब्लिक अवेयर हो रही है। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के समय में लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं, इट्स राइट और नॉट। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खुद से पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मतलब इसीलिए कुछ पता ही नहीं?
1: देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि पत्रकार कोई खुद से नहीं बन सकता है। आप एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है और जर्नलिज्म के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल इथिकल दोनों होती
0: क्या
1: है,
0: बात है? क्या?
1: तो वो आप में अगर नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारिता अलग है। जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो एक अलग जॉब है।
0: यस, उस कैटेगरी में नहीं,
1: वो नहीं आएंगे, पत्रकार में नहीं आएंगे। अच्छा, इसी वजह से आपको बताएं, जैसे अभी तो वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है डिबेट कि फेसबुक ने एल्गोरिदम के तौर पे रोहिंग्यास वाला रॉयट बर्मा में, म्यांमार में, सिर्फ इसलिए कि रोहिंग्यास के एंटी अगर वो जाएगा तो एल्गोरिदम में वो बढ़ रहा था, तो एल्गोरिदमिक ढंग से वो रॉयट्स हो गए वहां पे
0: जी।
1: तो ये सारी चिंता तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि सोशल मीडिया का ये जो आस्पेक्ट है ना, कि वो एल्गोरिदम से गाइडेड होता है, वो इथिक्स से गाइडेड नहीं होता है। अगर एल्गोरिदम से गाइडेड होगा तो वो इमोशनलेस होगा।
0: असर इस चीज को, इस वर्ड को अगर आप थोड़ा समझाना चाहें तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा जिस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं है। एथिक्स की बात तो चलो हम समझ में आ गए, जो एल्गोरिदम का आप जिक्र कर रहे हैं,
1: जैसे मान लीजिए कोई चीज, हम फर्स्ट पोस्ट में काम करते थे तो हम लोग के पास ये होता था कि मेरी स्टोरी जो हमने लिखी है वो कितनी ज्यादा देखी गई, पढ़ी गई, उस पर लोगों ने टाइम स्पेंड कितना किया। उसमें कई कीवर्ड्स होते थे जो एल्गोरिदम से गाइडेड होते थे, तो उसको जब ट्वीट भी किया जाता था या वो किया जाता था, तो वो वर्ड्स जो कि लोग ज़्यादा देखेंगे उसलिए उसको उसी ढंग से ट्वीट करते थे या उसको फेसबुक पे डालते थे। ये होता है एल्गोरिदम से गाइड होना। और फेसबुक या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उसी से गाइड होते हैं। उनको पता होता है कि वर्ल्ड ओवर क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, तो लेकिन वो हमेशा इथिकल होगा, ये सही नहीं है।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत दोस्तों। ये जो सवाल था, यही जवाब सर से हम सुनना समझना चाह रहे थे, और ये सवाल का जवाब आपके लिए था कि इस भाषा को, इस परिभाषा को आप आत्मसात करिए कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विश्वास मत करिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए क्या ये सही है या गलत है। और जब आप अच्छी न्यूज़, अच्छी बातें प्रेषित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में लोग जागरूक भी होते हैं और जिससे वो लाभ भी उठा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर प्यार बांटते चलिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, एक शख्सियत हैं मीडिया जगत के, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और लगभग 4 दशक प्लस का अनुभव है सर के पास। आप हैं अजय सिंह सर। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
1: थैंक यू।
0: राष्ट्रपति जी का जिक्र आपके इस बायोडेटा में हो रहा है। प्रेस सचिव के रूप में आपने वहां काम किया और एक नहीं, ये आपकी खुशनसीबी है कि दो दो राष्ट्रपति के साथ आपने काम किया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ और अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मैम के साथ आपने काम किया। तो वो जर्नी कैसी रही, कैसे आप वहां पहुंचे और कैसा माहौल हुआ करता था, वो प्लीज आप बताएं सर।
1: राष्ट्रपति भवन तो बिल्कुल ही अलग असाइनमेंट था क्योंकि हम तो फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे हैं
0: जी।
1: तो ये दरअसल अपॉइंटमेंट होता है जो ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं तो उनका उनसे होता है और राष्ट्रपति जी अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से ये एक सरकारी अपॉइंटमेंट होता है, सरकारी अधिकारी के रूप में हमने वहाँ काम किया है और जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ काम करना अपने आप में एक
0: बड़ी बात,
1: हाँ एक हमारे लिए भी वो था क्योंकि हम मीडिया में थे तो मीडिया में हम फेंस के दूसरे साइड थे, सरकार के साइड में हम नहीं थे। जब हम इस तरफ आए तो कई चीज़ें पता चली कि शायद वहाँ पे अगर हम होते तो जो चीज़ न्यूज़ बन जाती वो न्यूज़ नहीं थी, या हम जितना जानते हैं जिस पे हम न्यूज़ बनाते हैं उससे 10 times ज़्यादा वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में आई और वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। कैसे हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, कैसे डेलीगेशन लेवल टॉक होते हैं, बैंक्वेट होते हैं, तो उसमें बातचीत क्या होती है, तो वो उसमें अच्छा। और दूसरा हमारा ये जो रोल था इसमें जब भी प्रेसिडेंट का इंटरफेस किसी से भी होता था तो उसमें हमारा रोल आता था। प्रेस सेक्रेटरी का रोल होता है, यानी अगर वो स्पीच दे रही हैं या उनका ट्वीट जा रहा है या कहीं पे भी बात कर रही हैं तो उसमें इनवेरिएबली जो प्रेस सचिव होता है उसका रोल होता है, उन्हीं को देना होता है सब
0: ये।
1: तो हाँ, तो वो अच्छा एक अनुभव था। दूसरा हमारे पूर्व जो पूर्ववर्ती थे उसमें भी काफ़ी इलस्ट्रियस लोग हैं, जयशंकर जी भी रहे हैं।
0: अच्छा,
1: प्रेस सेक्रेटरी। तो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग।
0: मैं और भी देख रहा था कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपने बहुत अपनी बातें रखी हैं, अगर अदरवाइज मैं देखूं कि बहुत लंबा लिखा जा सकता था आपके बारे में, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में बातें रखी हैं। तो मैं एक पक्ष पर ये जानना समझना चाहूँगा, इस वो ध्यान लेकर जाना चाहूँगा आपका कि आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं, जो किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में बताइए वो जर्नी कैसी रही, कौन कौन सी किताबें आपकी आई।
1: वो किताब एक ही किताब है मेरी जो पेंगविन ने छापी थी और वो है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर पे है और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से BJP को एक नए संगठन का ढांचा दिया और वो ढांचे में जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं पार्टी बिल्डिंग के, उस मेथड से वो कहाँ कहाँ अलग हुए और कैसे उन्होंने एक ऐसा BJP बनाया जो कि कांग्रेस जो 50s और 60s में जिस स्थिति में था 50s में आज़ादी के जस्ट बाद, BJP आज उसी तरह की पोजीशन में है। और इलेक्शन हारना जीतना एक अलग बात है, आप हो सकता है कि इलेक्शन हार जाएं या जीतें जो भी होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि BJP एक प्रिंसिपल पोल बन गया है, उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स होगी रिवॉल्व। कांग्रेस का जो 60-70 तक था, तो हमारा वही थीसिस था, उसी पे हमने रिसर्च किया था और करीब जो ये करीब 4 साल चला था रिसर्च और करीब 100 ऐसे लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किए हों उनसे हमारी बात बात हुई थी और
0: उस अनुभव के आधार पे आपने
1: उस अनुभव पे और जो हमने खुद भी देखा। दरअसल 95 में जब हम आए थे तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे BJP में थे, दिल्ली में थे, सेक्रेटरी थे पार्टी के, तो उस समय से जो हम देखते थे

0: उसके हिसाब से और कई लोगों से बात करके और उसके हिसाब से हमारा एक अपना आकलन था, वो हमने लिखी और उसका इंट्रोडक्शन लिखा। वॉल्टर एंडरसन एक हैं, वॉल्टर एंडरसन ने बीजेपी और आरएसएस पे काफ़ी काम किया है, ब्रदरहुड इन सैफरन उनकी किताब है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो ये जो जर्नी आपकी रही है बहुत अच्छी जर्नी रही है और जिस एक नई जर्नी में आप कदम रखने जा रहे हैं और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस यात्रा में हम सब आपके साथ हैं और इस यात्रा का हम लुत्फ उठाना चाहेंगे, आपकी संगत करना चाहेंगे, आपसे बारीकियों को हम सीखना समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शारदा यूनिवर्सिटी के SSMFE को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। साथ ही साथ मैं ये आखिर में ये समझना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई एक कहते ना कि आने वाली जनरेशन को कोई एक मंत्र या यूँ कहें कि कोई दिशा निर्देश या फाइनली यूँ कहें कि कोई एक ऐसा गुरु मंत्र जिनको वो ध्यान रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
0: देखिए मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर तो हूँ नहीं जो कि मैं मंत्र दूंगा, लेकिन हाँ नई जनरेशन से हमें भी काफ़ी कुछ सीखना होता है। तो और दूसरा इंटरेक्शन के साथ कई चीज़ें हमें मालूम चलेगी उनके बारे में, उनके एस्पिरेशन के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, और कई चीज़ें हमारी होंगी जो कि शायद उनको लगे कि इस लायक हैं कि उसको वो इम्बाइब करें।
1: बहुत खूबसूरत, इसके बारे में ज़रूर समझना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती। दिक्कतें परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, जिस राह पर आप चल रहे हैं हर्डल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, तो उन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम कैसे मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं?
0: नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुस्कुराने के सिवा। तो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए ये जो बातों का सिलसिला है, ये जो सफ़र रहा हमारा, यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने सुना जिनके बारे में, उनकी यात्रा को हमने जाना, आत्मसात किया। और आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल जोल के माध्यम से मेल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं, आपका स्वागत है। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, न टेंशन लेने की ज़रूरत, न किसी को टेंशन देने की ज़रूरत। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और अपने ख़ास मेहमान का भी हम दिल की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वैल्यूबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप थे हमारे साथ अजय सर, जो कि बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जो संपर्क सूत्र के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बताएगा ज़रूर। मैं ले रहा हूँ आपसे अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: बात नहीं, अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?
2: टीम तारा है तैयार।

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बाबूजी जरा धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो एक है, सेहत सही तो लाभ गई। और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है, क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा, हर्बल टी, अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचाकर रखिएगा। स्ट्रीट फूड, चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जरूर, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑनली ऑन सुरशादा 90.8 एफएम। सो शर्त मंजूर, सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, लेबल टिप्स official, so let's listen to it only on Surushada 90.8 FM.

0: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: मलाजू तेरा दिल दिल दिल, मलाजू तेरा दिल।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाए। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपको सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो FM सुनो शारदा 90.8 FM, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन, आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावा थी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, मेरे साथ हैं आज सेहतिया सिंह जी और आज हमारी चर्चा का विषय है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हम उसके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही तो लाभ कई। मैं हूं दीपाली। अब हमने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि लोगों को सेहत के बारे में पता चले, साथ ही उनकी सेहत पर होने वाले खर्चे कम से कम हो, यानी ना के बराबर हो। श्रोताओं, आज हम एक बहुत जरूरी विषय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं, जो आपके जेब के खर्चे बचाता है और आपको सही राह दिखाता है। यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसका मकसद है कि हर जरूरतमंद नागरिक को सही, सस्ती, सटीक जानकारी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, आयुष्मान के बारे में उसे जानकारी हो। आयुष्मान भारत के तहत दो बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। पहली, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत बड़े अस्पतालों में कैशलेस यानी नो मनी, बिना पैसा खर्च किए इलाज की सुविधा। हमारा जो कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई, इसका उद्देश्य यही है कि हम आपको बता सकें कि आपकी सेहत पर कम से कम खर्चा हो। कहने का मतलब है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े या लंबे इलाज की जरूरत हो तो उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा खर्चा कवर किया जाता है। इस विषय पर

0: में मेरा स्वागत किया और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप भी सब कुशल रहें और सभी जो श्रोता हैं वो भी हेल्दी रहें। कहा जाता है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में हो माया। कहा यह भी जाता है कि अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव मुक्त रहिए, अच्छा खान पान, अच्छी सोच, अच्छी निंद्रा और इसके अलावा वर्जिश जिसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आप हष्ट पुष्ट रहें, हेल्दी रहें। ईश्वर ना करे कभी आपके साथ कोई दिक्कत या परेशानी हो जाए, भागम भाग हो। हर कोई यही चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, लेकिन भारत सरकार ये जानती है, हम भी जानते हैं कि जब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो एक भाग दौड़ शुरू हो जाती है, रुपया इकट्ठा करना पड़ जाता है और फिर कभी कभी हमने ये भी देखा है कि किसी के पास रुपयों के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। जी हाँ, ऐसे समय में भारत सरकार ने एक योजना लेकर आई जिसका नाम है आयुष्मान, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो सभी श्रोताओं का धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और सच कहूं तो आयुष्मान PMJAY देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। दोस्तों, हमारे ही गांव के एक किसान है मनोज जी, उन्हें कुछ महीने पहले हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी। खर्च लगभग 4 लाख रुपए था जो उनके लिए नामुमकिन था, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने PMJAY की सुविधा का लाभ उठाते हुए इस स्कीम के अंतर्गत सक्रिय प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करवाई। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और खेत में काम भी करने लगे हैं। अगर आयुष्मान PMJAY योजना नहीं होती तो शायद मनोज जी जिंदा नहीं रहते। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि मनोज जी आज हमारे बीच में नहीं होते अगर ये योजना नहीं होती, और ऐसी तमाम किस्से हमने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। वो उम्र का दायरा क्या है, सरकार किस तरीके से योजना चलाती है, कौन इसके हितधारक लाभधारक हो सकते हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। PMJAY योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये ध्यान दीजिएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, यानी कि सिर्फ आपको एडमिट होने की आवश्यकता है, जिसे हम कहते हैं कैश लेस, यानी बिना एक पैसा दिए। पैसे की बात नहीं करते हम, यहाँ बात करते हैं रुपयों की, यानी कि बिना एक रुपया खर्च किए आपका इलाज संभव है। अब इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या किसी सूचीबद्ध या जिसे हम कहते हैं इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल में, बस आयुष्मान कार्ड आपके पास होना चाहिए।
1: अरे वाह भैया, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को, यानी बिना पैसा खर्च के इलाज। आपने जो मनोज जी का एग्जाम्पल दिया है वो हमारे समुदाय के लिए एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी भी सर्जरी को लेकर परेशान हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप घबराएं नहीं, आपका इलाज कैशलेस होगा। तो सेहतिया भैया, आपने तो एक रास्ता खोल दिया हमारे सभी श्रोताओं के लिए कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो कार्ड बनवाएं और सारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लें। लेकिन भैया, आप मुझे बताएंगे कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आखिर पात्र कौन होता है, मतलब कौन कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं?
0: देखिए, आयुष्मान PMJAY खासतौर पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये उन लोगों के लिए बनाई गई है ये योजना जिनके पास आर्थिक तंगी है, रुपयों का अभाव है ना, जिन परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना के रिकॉर्ड में हैं या जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आते हैं, वो लोग सीधे इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा जो भवन और निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 60 साल से ज्यादा उम्र के अकेले बुजुर्ग सभी इस योजना के दायरे में आते हैं। साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, पंजीकृत पत्रकार, 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकता है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों पर तो आय की भी कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए 70 साल से अधिक के किसी भी वर्ग के बुजुर्ग हो वो आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत सभी सुविधाएं ले सकते हैं।

0: अरे वाह भैया, इसका मतलब सरकार ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो मजदूर हो, आशा बहन हो, हमारे बुजुर्ग हो। लेकिन जरा ये तो बताइए, PMJAY में आखिर कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, और ये योजना इतनी खास क्यों मानी गई है कि सारे समुदाय में इसकी चर्चा है?
1: भाई दीपाली जी, मानना पड़ेगा आप जो चर्चा कर रही हैं, विषय बहुत अच्छा लेकर आई हैं, बहुत अच्छी बातें यानी कि अच्छे सवालात आप मुझसे जानना चाह रही हैं। चलिए, जो एक अनुभव है, जो बातें मैं जुटाकर रिसर्च के आधार पर लेकर आया हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आयुष्मान PMJAY कोई साधारण योजना नहीं है। दोस्तों फिर से दोहराता हूं, ये कोई साधारण योजना नहीं है, इसने बड़ी क्रांति ला दी है। ये एक हेल्थ योजना है, हेल्थ पॉलिसी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। जो कि मैंने अभी आपको कहा, अब तक देश के 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवार यानी करीब 55 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, यानी कैशलेस, यानी बिना एक पैसा खर्च किए। मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर है उन्होंने एक पैसा लिखा है, वैसे देखा जाए तो एक पैसे से शुरुआत होती है, एक रुपया बनता है, तो इस तरीके से ये मुफ्त योजना है। आयुष्मान PMJAY का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी को बड़ा ऑपरेशन करवाना हो या लंबा इलाज चलाना पड़े तो परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता। अब आप सोचिए, जब कर्ज का हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसी स्थिति पुराने समय में रहती होगी या वर्तमान समय में अक्सर हम देखते ही हैं, और इसीलिए हम दुआ करते हैं कि कभी किसी को कोई रोग ना लगे। इसीलिए आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इसलिए तनाव मुक्त अपने आप को रखेंगे तो आप खुश रहेंगे। पहले लोग महंगे इलाज के लिए जमीन बेच देते थे या उधार लेते थे, लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से इलाज तुरंत और बिल्कुल मुफ्त हो जाता है।
0: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते जमीन जेवर और घर बेचते हुए देखा भी है। आज ये योजना उन लोगों को साहस बंधाती है जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब परिवार से हैं या जो स्वास्थ्य संबंधी महंगी सुविधाओं को का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। तो भैया आप मुझे बताएं कि अब गरीब भी बिना चिंता के अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा पा रहे हैं, तो आयुष्मान PMJAY योजना में आखिर क्या क्या इलाज शामिल हैं? मतलब कौन कौन सी बीमारियों या सुविधाओं का खर्चा सरकार उठाती है?
1: देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आज हम जो चर्चा लेकर आए हैं दोस्तों, विषय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हम बातें कर रहे हैं, और एक अनुभव के आधार पर एक्सपर्ट की राय लेते हुए, एक ताना बाना बुनते हुए ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आयुष्मान PMJAY लगभग हर बड़ी बीमारी और इलाज को कवर करता है, पर सबसे अहम समझना ये है कि ये योजना उन बीमारियों के लिए है जिसमें हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। और तो और, इस योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल होती हैं, यानी अगर किसी को पहले से शुगर, दिल की बीमारी या किडनी की समस्या है तो उसके बावजूद इस बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज हो सकता है। इसके अलावा योजना में करीब 1949 यानी कि 1949 तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर का इलाज, हार्ट सर्जरी और कई अन्य गंभीर बीमारियां। सबसे अच्छी बात यह कि अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले का खर्च और भर्ती के बाद 15 दिन तक का खर्च दोनों सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें दवाइयों, टेस्ट, डॉक्टर की परामर्श फीस और फॉलोअप विजिट्स का भी खर्च शामिल है।
0: अच्छा, इसका मतलब है कि मरीज को इलाज के पहले और बाद की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन आयुष्मान PMJAY योजना में आखिर किसे किसे कवर किया जाता है? क्या सिर्फ परिवार का मुखिया या बाकी सदस्य भी इसके तहत आते हैं, और ये इलाज कहाँ और कैसे कराया जाता है सेहतिया भैया?
1: देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पूरा परिवार कवर होता है, मतलब इसमें माँ, पिता, बच्चे, नवजात शिशु, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पर ध्यान रहे, परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग आयुष्मान कार्ड बना होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सरकारी अस्पतालों ही नहीं बल्कि सूचीबद्ध, जिसे हम कहते हैं इम्पैनल्ड, निजी अस्पतालों में भी इलाज मुफ्त होता है। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड दिखाइए और इलाज शुरू। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 5862 यानी कि 5862 से भी ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं। यहाँ इलाज पूरी तरह कैशलेस और निशुल्क है, यानी न कोई कागजी झंझट न ही पैसे की चिंता। और सबसे अच्छी बात है कि अब तक इस योजना का 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है, यानी करोड़ों परिवारों की सेहत अब सरकार की जिम्मेदारी है।
0: अच्छा भैया, यानी परिवार के हर सदस्य का अपना अपना अलग आयुष्मान कार्ड बना होना जरूरी है, लेकिन इस योजना के बारे में लोगों को जानकारी कैसे मिलती है? गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है या इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। ऐसे में उन्हें कौन समझाता है या कौन बताता है, कौन उनका मार्गदर्शन करता है सेहतिया भैया?
1: देखिए, ऐसा है दीपाली जी कि इस बात से मैं इत्तफाक भी रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ, दोनों बातें। अब आप पूछेंगे क्या, क्यों, कैसे, तो मैं समझाना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ। डिजिटल समय है, यानी कि सबके हाथ में एक तो मोबाइल है और मोबाइल पर हम सब अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत कर रहे होते हैं। अब आप देखेंगे कि किसी गरीब निर्धन के घर में भी मोबाइल मिल जाता है और उस पर वो सारी बातें आ रही होती हैं। एक बात, यानी कि कहीं ना कहीं जानकारी मार्केट में हमारे आसपास घूम रही है। दूसरी बात, हम है ना, यानी कि रेडियो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो अपने मन की बात जन जन तक पहुंचा रहा है। तीसरा, प्रिंट एक मीडिया यानी कि अखबार एक माध्यम है और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी कैंप लगाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनको बातें बताते हैं। लोगों को इसके योजना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मैं आपकी बात पर आ जाता हूँ। गांव या छोटे कस्बों में तो कई लोग अभी भी नहीं जानते, मान लेते कि नहीं जानते कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, जो वाकई निर्धन है, या इसका इस्तेमाल कहां कैसे करें। ऐसे में उन्हें कौन समझाता है, ये मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं। दरअसल आयुष्मान PMJAY को जमीन पर सही तरीके से लागू करने में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी भूमिका है। गांव और शहर दोनों जगह आशा बहनें, ANM, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और आरोग्य मित्र सब मिलकर लोगों तक ये योजना की सही जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों, इनका काम लोगों को बताना है कि आयुष्मान PMJAY क्या है, कौन कौन इस योजना के पात्र हैं और उन्हें सही अस्पताल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य कर्मी गांव गांव जाकर उन परिवारों को पहचानते हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, फिर उन्हें कार्ड बनवाने में मदद करते हैं और इलाज के लिए सही जगह तक मार्गदर्शन भी देते हैं।
0: अच्छा, शायद सेहतिया भैया इसीलिए कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा बहन, ANM, CHO या आरोग्य मित्र के अलावा मेडिकल ऑफिसर हमारे स्वास्थ्य नायक हैं।
1: सही कहा दीपाली जी आपने। आयुष्मान PMJAY को लोगों तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ही होती है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, इनके सम्मान के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन कर्मियों का जो सम्मान, यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का और सभी लोगों का, आशाओं का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कोरोना के समय किस तरीके से सम्मान किया, तो इनके सम्मान को, इनकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, यूं समझ लीजिए कि आखिरी छोर तक जाती हैं, जड़ तक जाते हैं ये लोग और लोगों को अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं। ये लोग सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। देखो, वही बातें आ रही है ना, क्योंकि मैं तो मन की बात कर रहा था। घर घर जाकर जानकारी देते हैं, परिवारों से बात करते हैं और उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि लोगों को जीवन रक्षक इलाज से जोड़ना भी है, यानी ये अपने समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य नायक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये क्या करते हैं? तो जवाब है कि स्वास्थ्य कर्मी गाँव की बैठकों में या घर घर भ्रमण के दौरान लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आयुष्मान यानी कि PMJAY के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो गरीब और मेहनत कश परिवारों की जिंदगी बदल रही है। उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर वे समझाते हैं कि ये योजना पूरे परिवार का इलाज कवर करती है, पहले से मौजूद बीमारियों का भी इलाज करती है और अस्पताल से छुट्टी के बाद 15 दिन तक का खर्च भी देती है। सबसे बड़ी बात कि परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ता, न जमीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार देती है।
0: अच्छा भैया, मतलब ये आशा बहनें और आरोग्य मित्र ही हैं जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे आयुष्मान कार्ड बनता है, इलाज कहाँ मिलेगा। सच में ये लोग हमारे समाज के असली हीरो हैं जो घर घर की सेहत और रक्षा कर रहे हैं। भैया, आजकल ई कवच ऐप का नाम बहुत सुन रही हूँ, क्या ये ऐप इस योजना से जुड़ा हुआ है और इसमें हमारी आशा बहनों और ANM की क्या भूमिका होती है? आयुष्मान कार्ड आज स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना है। सुनो, शादा और स्मार्ट मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ कहीं। स्मार्ट समय समय पर समाज से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को उठाता है जिनकी समुदाय तक पहुंच बेहद जरूरी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से स्मार्ट जागरूकता भी फैलाता है। सुनो शादा के साथ मिलकर इसी क्रम में सेहतिया भैया टीकन भाभी आज जैसे किरदार मिलकर समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग आप तक विशेष कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है। तो सेहतिया भैया, आगे की जानकारी आप दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी रूपरेखा भूमिका बनाने के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना रही है। इस दिशा में ई कवच ऐप एक बहुत उपयोगी कदम है। इस ऐप के जरिए आशा और ANM बहनें अपने क्षेत्र के सभी आयुष्मान यानी PMJAY लाभार्थियों को पूरा डेटा दर्ज करती हैं। यानी जो भी परिवार योजना के तहत आता है उनका नाम, कार्ड स्टेटस और कार्ड नंबर सब कुछ ई कवच एप्लीकेशन में भरा जाता है। इससे सरकार को ये पता चलता रहता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। आशा और ANM इस योजना की रीढ़ हैं। हाँ, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आशा और ANM इस योजना की रीढ़ की हड्डी हैं दोस्तों। उनके काम को हम सराहते हैं और यही वजह है कि उनको हम सैल्यूट भी करते हैं। इनका काम है लोगों को आयुष्मान यानी PMJAY योजना के बारे में जानकारी देना, ऐसे परिवारों को पहचानना जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें सही अस्पताल तक मार्गदर्शन करना और जब मरीज अस्पताल से छुट्टी पाए तो उनकी देखभाल और फॉलोअप में मदद करना। साथ ही अगर किसी को कोई सवाल या परेशानी हो तो वो आसानी से ऑनलाइन मदद ले सकता है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है आयुष्मान संपर्क हेल्प लाइन 1800 18, दोबारा 00 और 4×4। अब हिंदी में बता देता हूं, 1800 लिखेगा एक बार, फिर दोबारा लिखेगा 1800 और 4×4 के अंक यानी कि 4 बार, 4444। ठीक है, आयुष्मान सारथी यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप। तीसरी बात आती है आयुषी यानी आयुष्मान PMJAY चैट बॉट। इन माध्यमों से कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी या समस्या का समाधान घर बैठे पा सकता है दोस्तों।
0: अच्छा सेहतिया भैया, आपने आयुष्मान संपर्क हेल्पलाइन, आयुष्मान साथी और आयुष्मान PMJAY चैट बॉट के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। इसका मतलब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो गया है। लोगों को न सिर्फ इलाज में सुविधा मिल रही है बल्कि योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी भी सीधे उन तक पहुंच रही है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चैट बॉट हो या हेल्पलाइन नंबर हो। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच रहा है। दोस्तों, सच कहा जाए तो आयुष्मान PMJAY जैसी योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक नई उम्मीद और आशा की किरण दी है। मुफ्त इलाज, सम्मानजनक सेवा और डिजिटल सुविधा तक आम लोगों की पहुंच बनाई है। श्रोताओं, अब सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को समाप्त करने की बारी आ गई है। आज हमने आपसे प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य कार्ड कैसे बनवाएं, उनकी सुविधाओं का कैसे लाभ उठाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे उपलब्ध है आशा बहनें, ANM, CSC के अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर्स की क्या भूमिका है, इसके अलावा हमने आपसे कुछ और बेहद ज़रूरी बातें साझा की। यानी ना तो अब किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, ना किसी को जेवर बेचने पड़ेंगे और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए। यदि अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो नज़दीकी आयुष्मान केंद्र पे जाकर सही जानकारी जुटाकर, जो हमारे एपिसोड के माध्यम से दी गई है, सुनकर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आप आशा बहनें, किसी मेडिकल ऑफिसर ANM की भी मदद ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारा रेडियो सामुदायिक है, कि हम समुदाय की आवाज़ बने। हम आप तक ऐसे ज़रूरी मुद्दों को लेकर आएं जो आपको पता नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। श्रोताओं, अब हमें इजाज़त दीजिए। मुझे यानी दीपाली और मेरे साथ जो हैं सेहतिया सिंह जी, उनको भी, उन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आकर हमें बहुत सारी हमारी जिज्ञासाओं को विस्तार पूर्वक समाप्त किया। हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे आयुष्मान PMJAY से जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में और जानेंगे कि इस योजनाओं से महिलाओं और बच्चों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। मिलते हैं अगली बार, लेकिन जाने से पहले हम शपथ लेना नहीं भूलेंगे। तो मैं और सेहतिया सिंह जी मिलकर लेते हैं शपथ।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: जी हाँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हूँ गगन सेहतिया के रूप में और मेरे साथ जुड़ी रही दीपाली जी।
0: मिलते हैं अगली बार एक बेहद जरूरी और गंभीर मुद्दे के साथ।
1: और हम भी गंभीर हो गए। चलिए आप गंभीर मत होइए और तनाव मुक्त अपने आप को रखिए। जिंदगी बहुत खूबसूरती से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ, संगीत के साथ अपने परिवार के बीच में गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनुशा 90.8 FM। आपको कैसा लगा

0: 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। नमस्कार आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
0: सुनो शारदा
6: 90.8 FM।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण

0: होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

सुनो शारदा 90.8 FM।

करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, अक्सर हम बीमार हो जाते हैं और कोई भी बीमारी हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और अक्सर हम जो बीमार होते हैं वो होते हैं स्वच्छता का ख्याल ना रखना या अपने शरीर का ध्यान ना रखना या ऐसी चीजें खा लेना जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है या फिर प्रदूषित चीजों का उपयोग करना। तो ऐसे में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने घर आंगन में, अपने आसपास और जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर, चाहे हम सफर में हों, घर में हों या कहीं पर भी हों, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब हमारे आसपास स्वच्छता होती है, हम अपने शरीर की स्वच्छता करते हैं तो बीमारियों से बचते हैं। और किसान मित्रों, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आसपास लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपदेश दिया करते थे। उनका मानना था कि

वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। और किसान मित्रों, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान मित्रों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, खुद भी स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वच्छता की बात बताएं और पेड़ जरूर लगाएं और जो भी कचरा है उसको इधर उधर ना फेंके, उसका प्रबंधन आप सही तरह से करें ताकि हमारा जो गली है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, सब स्वच्छ रहें और जिससे कि आपका स्वास्थ्य है वो बेहतर हो और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुंदर बने। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही स्वच्छ भारत अभियान की और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति रागनी, कलाकार थे ज्ञानेंद्र सरधाना। किसान मित्रों, हमारे शरीर में जो एक ताकत है वो हमेशा नहीं रहती, यानी कि धीरे धीरे जो काम करने की क्षमता है हमारे शरीर में, जो अंग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तो उस समय आप काम नहीं कर सकते, और जब आप काम नहीं कर सकते तो जो हमारे रोजाना के खर्चे हैं उनके लिए पैसे भी नहीं कमा सकते। तो वृद्धावस्था है वो हमारी अच्छे से कटे, इसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इस योजना में पात्र कौन हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिनकी जो उम्र है 18 से 40 वर्ष की है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक बैंक में बचत खाता होना चाहिए और आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। और किसान मित्रों, अगर हम बात करें इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक लाभ की, तो ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को समान पेंशन मिलती रहेगी, और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अब बात आती है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो आप बैंक में जाकर के, जहां पर भी आपका बचत खाता है वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल पेंशन योजना के बारे में। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप अच्छी से खेती कर पाए और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग कम से कम कर पाए, उसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। किसान मित्रों, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही पीएम प्रणाम योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

तो किसान मित्रों, सुनील चौहान द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: जी हाँ, मैं यानी मीनाक्षी आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है और इस कार्यक्रम को स्मार्ट संस्था जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना, ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
6: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ। सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी, अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ। उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में, भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ। चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का, देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ। औरतें घर, ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है। कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है।
5: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है। आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है।

0: नेहा, अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यहीं की यहीं किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूँ?
2: अरे माँ, फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियाँ पैदा कर चुकी है?
2: तो माँ इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ, ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है, मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
2: अरे माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ, लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
2: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ।
2: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ, क्यों आखिर?
1: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
0: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
2: अरे माँ क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा तुम चलो आराम करो, और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो, माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
1: लेकिन अरुण, माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
2: अरे नेहा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ।
0: क्या है बोलो।
2: माँ सुनो तो सही।
0: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है?
2: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
0: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ। बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
2: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम? औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है, पता है माँ तुम्हें? सबसे बड़ी भूल है हम सब की ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
0: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
3: माँ, बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ्य केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो?
3: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
0: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी?
3: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोजोन होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं, और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो। तुम भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो, इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या तुम समझ गई हो?
0: अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो?
1: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप?
0: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
1: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप?
0: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
1: माता जी आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे?
0: होने को क्या है, तुम बहनों का वश चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
1: अरे माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है?
0: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
3: अरे माँ तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है। ऐसी भी क्या बात होगी है माँ, अब क्यों गुस्सा हो? अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
0: शांत क्या, खाक होना है? पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
3: अरे माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
0: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
3: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था, और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
0: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में?
3: माँ मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
0: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर,

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। लो आ गई अब दोनों। अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के रखा है और तुम्हें भी बता रही थी कि मुझे इस बार लड़का ही चाहिए।
0: तो माँ जी, अगर आपको लड़का चाहिए, इसमें मेरी बहन क्या कर सकती है?
2: बस बस, अब तुम भी मुझे समझाना बंद करो।
0: देखिए माँ जी, ये मैं नेहा से सुन चुकी हूँ कि आप लिंग जांच करवाना चाहती हैं उसकी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, आप खुशी से कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जेल जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए आप।
2: अरे अरे जेल?
0: जी हाँ जेल, और सिर्फ आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके बेटा भी जाएंगे, और वहाँ पर बैठ के आप दोनों चक्की पीसने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा।
2: अरे अब ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया मैंने जब जेल जाना पड़े?
0: अपराध तो आप कर रही हैं, लिंग जांच करवाना बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
2: अरुण देख बेटा, ये आशा कह क्या रही है?
3: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूँगी।
3: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
2: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियाँ करें।
4: हाँ हाँ जरूर।

0: यहाँ तो सब ठीक हो गया, परंतु हर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ज्यादातर घरों में लड़की पैदा हुई है ये सुनकर ही सांप सूंघ जाता है। आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिस्ट पुष्ट होना चाहिए, दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं, प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटे की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन नहीं स्वीकारना होगा मुझे कोई अभाव। सिर्फ कानून ही नहीं दिला सकता मुझे सम्मानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
0: अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष

0: कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: क्या खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने चक्रवातों के बारे में जाना कि चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी समुद्र का खजाना।

0: विवेक विवेक ये सृष्टि और मानव दोनों कहाँ गए? इन दोनों काफी देर से भूख लगी का शोर मचा रहे थे।
1: और अब खाना तैयार है तो इन दोनों का पता ही नहीं।
2: मम्मी शायद ये दोनों छत पर होंगे।
0: लगता है दोनों भाई बहन पतंग उड़ा रहे हैं।
1: विवेक जाओ उन्हें खाने के लिए बुला।
0: जल्दी जाओ भाई, भूख लगी हुई है।
3: मानव
0: तुम भी ना खाने से मत।
1: मैंने थोड़ी ना भेजा
3: है। मानव
1: तुम भी ना।
3: मानव तैयार है, नीचे आ जाओ जल्दी।
4: अभी आ रहे हैं।
3: लो आ रहे हैं अभी।
1: लो हम आ गए पापा।
0: अरे बच्चों जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है।
4: अरे वाह, आज तो मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए हैं, साथ में हलवा भी है मानव,
1: और नारियल की चटनी भी है।
0: बच्चों शुरू हो जाओ जल्दी से।
1: चलो
0: मानव। अरे भाई मुझे बात करो।
1: हाँ ये लो बेटा तुम भी
2: खाओ। मम्मी चटनी का स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा है?
4: मुझे लगता है कि मम्मी ना नमक डालना भूल गई।
0: हाँ बच्चों, नमक नहीं होने के कारण ही सचमुच खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है।
1: मम्मी क्या नमक खत्म हो गया है?
2: सृष्टि हुआ नहीं तो जल्दी हो जाएगा। हा? तुम्हें पता ही होगा अपना मानव थाली में हमेशा अलग से नमक जरूर लेता है
1: और हमेशा फिर थाली में छोड़ भी देता है। हाँ घर में सबसे ज्यादा नमक मानव ही व्यर्थ करता है।
4: अरे भाई नमक जैसी सस्ती चीज के लिए आप मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो? पापा की सैलरी का सबसे कम हिस्सा इस नमक पर ही तो खर्च होता है।
1: अरे नमक के लिए तुम लोग मेरे प्यारे बेटे को क्यों परेशान करते हो?
2: मम्मी ये नमक ही तो था जिसने 1930 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर दिया था। इस नमक में बड़ी ताकत है।
4: वो कैसे भैया?
2: मानव सन 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था।
1: भैया एक बात बताओ, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने अपने आंदोलन के लिए नमक जैसी साधारण चीज क्यों चुनी?
5: बच्चों क्योंकि नमक का उपयोग हम सभी करते हैं और ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बना रखा था कि नमक का व्यापार केवल सरकार करेगी, यानी आम आदमी को ये हक नहीं था कि वो नमक बना सके।
1: यानी नमक की सबको कीमत चुकानी पड़ती होगी और वो भी वो कीमत जो सरकार चाहे।
4: तब तो सबकी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा नमक खरीदने में ही जाता होगा।
0: और सिर्फ यही नहीं, नमक का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर आजादी की लड़ाई में जन जन को जोड़ा जा सकता था।
4: पापा तो क्या गांधी जी इसमें सफल हुए?
5: बेटा सफल क्यों नहीं हुए, नमक के आंदोलन के बाद तो आजादी की लड़ाई ने जैसे आग पकड़ ली
1: और वो आग 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही बुझी। क्यों पापा ठीक कहा ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। पर बच्चों नमक का दांडी यात्रा से ही नहीं बल्कि सैलरी शब्द से भी गहरा संबंध है।
4: पापा भला सैलरी शब्द का नमक से क्या लेना देना?
0: मानव सैलरी शब्द की उत्पत्ति ही लैटिन शब्द सेलेनियम से हुई है, इसका अर्थ नमक के रूप में भुगतान होता है। और बेटा और तो और रोम में तनख्वाह या पगार के रूप में नमक दिया जाता था।
4: अच्छा?
0: इसीलिए इसे सैलरी बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द सॉल्ट इसी शब्द से निकला है।
4: अच्छा इसका मतलब सर्विस यानी नौकरी करने वालों के लिए तो नमक का विशेष महत्व है।
1: सर्विस क्लास ही क्यों, अमीर हो या गरीब नमक तो सभी के लिए आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: मम्मी बातें तो चलती रहेंगी लेकिन बिना नमक के चटनी नहीं खाई जाएगी।
5: लो बच्चों खाने के ऊपर से थोड़ा नमक डालो।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: लो मुझे भी देना।
1: ये लो भैया
4: ये ले।
2: हाँ मम्मी
6: अच्छा लग रहा है।
4: अब अच्छा है।
2: नमक डालने से तो चटनी में स्वाद आ गया।
4: लेकिन भैया ये नमक इतना सस्ता क्यों है?
1: मानव तेरा विचार क्या नमक को महंगा बनाने का है?
4: अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब है कि इतना नमक आता कहाँ से है?
1: अरे बुद्धू इतना भी नहीं पता तुझे, नमक समुद्री जल से बनता है।
2: मानव इतना तो पता होना चाहिए था तुझे, समुद्र ही नमक का सबसे बड़ा स्रोत है।
4: पर पुराने समय में जहाँ लोग समुद्र के पास नहीं रहते थे उन लोगों को नमक कहाँ से मिलता था?
1: उन्हें नमक खरीदना पड़ता था, वो भी मुंह मांगी कीमत पर।
4: तब तो उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नमक पर ही खर्च करना पड़ता होगा।
1: अरे पापा ने भी बताया तो रोम में तो वेतन का एक हिस्सा नमक के रूप में ही दिया जाता था।
0: बच्चों बच्चों बच्चों नमकीन बातें बहुत हुई, अब हलवा खाओ। हलवा हमें भी खिलाओ भाई।
1: स्वाद स्वाद में देखो ज्यादा ना हो जाए। मम्मा
2: लो ना पापा आप लो।
1: खाए चले जा रहे
4: हैं। अरे पापा आज हमें घूमने भी तो जाना है ना।
0: अरे जाएंगे सही, पहले हलवा तो खा ले हम। अरे तब तक तुम लोग ये तो तय करो कि जाना कहाँ है।
2: पापा, समुद्र के नमक से मुझे याद आया, क्यों ना हम समुद्र का खजाना नामक प्रदर्शनी देखने चले।
1: भैया कहीं तुम महासागर विकास विभाग की चलती फिरती प्रदर्शनी की बात तो नहीं कर रहे?
2: उसी की तो बात कर रहा हूँ सृष्टि, इन दिनों ये प्रदर्शनी हमारे शहर में आई हुई है।
4: अरे वाह पापा, तो आज चलते हैं समुद्र का खजाना देखने के लिए।
0: जरूर चलेंगे बच्चों, जरूर। बस मैं ये हलवा खा लूं, फिर थोड़ी सी एक प्यारी सी छोटी सी नींद ले लूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है,
4: चलो ठीक है,
0: चलो।
1: यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
2: समुद्र का खजाना देखने लोग भी तो बड़ी संख्या में आए हैं।
5: यहाँ तो चार गैलरीज हैं। पहले किस में चले?
4: मम्मी पहले हम चलते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र के संसाधनों की जानकारी लेने, ठीक है?
0: हाँ भाई, तट से होते हुए ही गहरे समुद्र में जाएंगे।
4: अरे देखो यहाँ तो नदी मुख, समुद्री झील, बालू के टीले और कच्छ यानी मैंग्रोव वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
0: मानव, समुद्र तटीय क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत और बालू प्राप्त होती है और यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं, जैसे थोरियम, सिलिकॉन वगैरह वगैरह।
5: रेत और बालू तो सही, पर मैंग्रोव वनस्पति?
2: मैं बताता हूँ मम्मी, प्रकृति ने इन वनस्पतियों को खारे पानी में उगने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है।
1: खारे पानी में उगने के अलावा मैंग्रोव के बीज में पेड़ पर ही अंकुरित होने का गुण भी पाया जाता है।
0: बच्चों, प्रकृति की अनोखी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं।
1: आगे देखते हैं और क्या क्या है समुद्र में।
2: आइए
4: भैया, यहाँ ये सुनामी का चित्र क्यों दिया गया है?
2: मानव, इतना भी नहीं पता कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी या समुद्री लहरों और चक्रवात के प्रभाव को कम कर देती हैं। तटीय क्षेत्रों के लिए ये वनस्पतियाँ प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं।
4: तो इसका मतलब मैंग्रोव सुनामी के तट पर पहुंचने से पहले ही उसके वेग को कम कर देती है।
1: हाँ मानव, मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुनामी जैसी आपदा से बचाने के साथ और भी अनेक कामों में उपयोगी हैं, जैसे ये जलाने के लिए और फर्नीचर निर्माण में भी उपयोगी हैं।
2: और मैंग्रोव वनों में अनेक वन्य जीव जंतु और पक्षी भी रहते हैं।
0: बच्चों, भारत के सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र में बाघों की अच्छी खासी संख्या है।
1: इन वनों से तो दूर ही रहना मानव।
4: क्यों?
1: नहीं तो पता चले कि बहादुर मानव बाघ के सामने आने पर भीगी बिल्ली बन गया।
0: ये देखो
5: यहाँ समुद्री पानी से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया चित्रों के माध्यम से बताई गई है। और ये देखो, पहले समुद्री जल के वाष्पन से इसके रवे या डल्ले बनते हैं।
4: अरे वाह, ये तो नमक के खेत लग रहे हैं। और ये नमक जैसे मिश्री की डली हो।
1: लेकिन ये मिश्री नहीं, नमक है।
2: और मानव, इन्हीं रवों को पीस कर तो नमक बनाया जाता है।
0: बच्चों, आजकल नमक बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में इन रवों को साफ करके तथा पीस कर बनाया जाता है।
5: नमक बनाने के साथ ही अब तो अधिकतर पैकिंग के दौरान ही इसमें आयोडीन भी मिला दिया जाता है।
4: आयोडीन?
1: मानव, आयोडीन हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। समुद्र की वनस्पतियाँ भी आयोडीन का एक मुख्य स्रोत है।
0: बच्चों आगे चलो, अभी बहुत कुछ देखना है।
1: हाँ, चलो चलो चलो चलो।
2: यहाँ तो समुद्र की लवणता के बारे में बताया गया
1: है। मुझे पता है कि समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति लीटर होती है।
0: हाँ, वेरी गुड। अब बच्चों, सागर की लवणता में अकेले सोडियम क्लोराइड यानी नमक का योगदान ही करीब 80% है।
2: और जानते हो मानव, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्र के पानी में कई और भी लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि।
1: पापा, अब समुद्र के सजीव संसाधनों की प्रदर्शनी देख लेते हैं।
4: अरे वाह, ये देखो, ये रंग बिरंगी मछलियों के चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं।
5: बेटा, समुद्र में मछलियों का संसार इन चित्रों से भी अधिक सुंदर है।
4: इनसे भी सुंदर है?
2: हाँ मानव, समुद्र में तो मछलियों की हजारों प्रजातियाँ रहती हैं।
0: और बच्चों पता है ना, मछलियाँ प्रोटीन का भंडार होती हैं, पूरे संसार में अधिकतर लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता समुद्री जीवों से ही पूरी होती है।
1: अच्छा ये बताओ मानव, धरती का विशालकाय जीव कौन सा है?
4: ब्लू व्हेल।
1: अरे वाह, तुझे तो पता है।
2: अरे सृष्टि, सामने व्हेल के बारे में जो जानकारी दी गई है मानव ने उससे पढ़कर उत्तर दिया है तुम्हें।
1: तभी तो मैं कहूँ हमारा बुद्धूराम समझदार कैसे हो गया।
4: पापा,
1: पापा मैंने क्या किया?
2: पापा आगे चलते हैं, अभी तो देखना है कि क्या क्या बाकी है समुद्र के खजाने में।
6: चलो
5: बेटा, समुद्र को धरती का भंडार गृह भी कहते हैं। यहाँ वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समाई हुई है जो सभी समुद्री पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है।
4: अरे ये समुद्र में जंगल कहाँ से आया?
1: मानव, ये जंगल नहीं समुद्री जीव पोलिप या मूंगे की चट्टानें हैं।
0: इन्हें कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है।
5: बच्चों, ये प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
2: मानव जानते हो, प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों में विभिन्न रंगों वाले मूंगे, सीपी और शंख तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में जैव विविधता भी पर्याप्त होती है। उत्पादन क्षमता के आधार पर इनकी तुलना जमीन के वर्षा वनों से की जाती है।
0: हाँ बच्चों, केकड़े, मोलस्क, स्पॉन्ज और बहुत सुंदर सी मछलियों सहित प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में लाखों समुद्री जीव जंतु निवास करते हैं।
5: और इस क्षेत्र से अनेक प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व भी मिलते हैं।
4: आज मुझे समझ में आया कि जमीन से अधिक जीव तो समुद्र में बसे हैं।
2: बिल्कुल ठीक समझे मानव तुम। समुद्र असंख्य जीवों का घर है और ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था।
0: और बच्चों, समुद्री क्षेत्र में मछली उद्योग, झींगा उद्योग और केकड़ा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार और भोजन भी मिल रहा है।
4: पापा, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमको भी कुछ खा लेना चाहिए?
1: अरे हाँ, बच्चों को भूख लगाई होगी, अब क्यों ना हम बाहर ही कुछ खाएं?
0: हाँ। वसुधा तुम भी।
1: लगता है मानव समुद्र का खजाना देखने नहीं बल्कि बाहर खाना खाने के लालच में आया है।
0: मानव, खाने के बाद अब हम प्रदर्शनी में समुद्र के निर्जीव खजाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो
1: चलो चलो चलते हैं।
4: अरे वाह, इस चित्र में तो समुद्र में कहीं पहाड़ तो कहीं गहरी खाई दिखाई गई है। समुद्र में पहाड़?
2: हाँ मानव, समुद्र भी धरती की तरह ऊंचा नीचा है।
0: और समुद्र की औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है।
5: और तुम्हें पता है बच्चों, समुद्र की इस गहराई में अनेक धात्विक खजाने दबे हुए हैं।
4: कौन से धात्विक खजाने दबे हुए हैं?
1: मानव, मम्मी का मतलब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या बहुधात्विक पिंडिका से है।
2: यहाँ बहुधात्विक पिंडिका के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है।
0: लिखा है कि भारत को इस दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से मध्य हिंद महासागर में 150,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला है। वर्ष 2002 तक भारत ने 2500 से अधिक स्थानों से 250 टन से भी अधिक बहुधात्विक पिंडिकाएं इकट्ठी की हैं, जिनसे हमें कई बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती हैं।
2: और आगे बढ़ो मानव, भारत के संरक्षित समुद्री क्षेत्र से प्राप्त पिंडिकाओं में तांबा, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज के करीबन 6.5 मिलियन टन अनुमानित भंडार जमा है।
4: दीदी, समुद्र के इस खजाने में सोना चांदी नहीं है क्या?
1: मानव, समुद्र के पानी में सोने और चांदी के अलावा ब्रोमीन, लोहा, कैल्शियम और सल्फेट जैसे अनेक तत्व घुले हैं।
4: इसका मतलब समुद्र से नमक ही नहीं कीमती धातुएं भी मिलती हैं।
2: और समुद्र से हमें मोती भी तो मिलते हैं।
4: तब तो इस चित्र प्रदर्शनी को नाम सही दिया गया है, समुद्र का खजाना।
1: तो पापा, अभी और क्या क्या है समुद्र के खजाने में?
0: अरे बेटा, समुद्र के भंडार में हाइड्रोकार्बन स्रोत भी महत्वपूर्ण है।
2: काला सोना कहलाने वाला पेट्रोलियम भी तो समुद्र से ही निकाला जाता है।
4: लेकिन समुद्र में पेट्रोल कहाँ से आता है?
5: मानव, देखो इस चित्र में छोटे समुद्री जीवों और वनस्पतियों को सागर तल में जमा होते दिखाया गया है।
2: और फिर उच्च दाब और ताप से ये जीव हजारों वर्षों में हाइड्रोकार्बन पदार्थ में बदल जाते हैं,
1: जिनसे हमें प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, डीजल, मोम और वैसलीन और न जाने क्या क्या मिलता है।
4: हाँ। अरे वाह, समुद्र से इतने सारे हाइड्रोकार्बन पदार्थ निकलते हैं।
1: मानव समुद्र को धरती का भंडार गृह ऐसे ही थोड़ा कहा गया है, यहाँ तो असीम प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई है।
0: आधी प्रदर्शनी तो देख ली बच्चों, अब क्या विचार है?
2: पापा कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमकर आते हैं।
4: नहीं नहीं, घूमेंगे नहीं, पार्क में बैठेंगे। पर पहले आइए, सभी का स्वागत है प्रदर्शनी के समुद्री ऊर्जा संसाधन वाले इस हिस्से में।
1: मानव क्या पिछले जन्म में गाइड थे?
4: फिर से
0: बच्चों यहाँ देखो, यहाँ अच्छी जानकारी दी है। लिखा है भारत के पास 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें उपस्थित सभी संसाधनों का दोहन किया जा सकता है।
1: पापा ज्वारीय ऊर्जा भी तो समुद्र के खजाने का एक मोती है।
0: हाँ बच्चों, विश्व के अनेक देशों में समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है।
4: तो क्या भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है?
0: हाँ?
1: भारत की अनुमानित ज्वारीय ऊर्जा क्षमता करीब 8000 से 9000 मेगावाट है।
5: और बच्चों इस चित्र में तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा को दर्शाया गया है। देखो
4: ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से ही संबंधित है ना दीदी?
1: हाँ मानव, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र के तटीय जल में निश्चित समय में उतार चढ़ाव होते हैं
5: और इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। और बच्चों यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे ज्वार भाटा की घटना से समुद्री जल के उतार चढ़ाव से टरबाइन को घुमाकर विद्युत पैदा

0: की जाती है।
1: देख रहे हो ना बेटा,
2: भारत में भी सुंदरवन क्षेत्र में करीब 3.5 मेगावाट के ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की योजना बन रही है।
3: बहुत अच्छी बात है बाबा। अब आगे चलें, आगे देखते हैं सागर में और क्या क्या ऊर्जा स्रोत छुपे हैं।
2: अरे ये देखो बच्चों, समुद्री जलतापी ऊर्जा जिसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन भी कहा जाता है, ये देखो दिखाया।
3: मानव, इस सिलसिले में सबसे पहला विचार किसका था?
0: मेरा तो नहीं था।
3: मैं बताता हूँ, इस तरह ऊर्जा प्राप्त करने के विचार को सर्वप्रथम 1881 में एक फ्रेंच इंजीनियर ने रखा था।
4: इसमें ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत समुद्री जल की विभिन्न परतों के तापमान के अंतर में छिपा है।
0: ये तो मैं भी जानता हूँ कि सूर्य की किरणों से समुद्री जल की ऊपरी परत अधिक गर्म हो जाती है।
5: हाँ मानव, समुद्री सतह के नीचे जल का ताप कम होता जाता है।
2: और इसी सिद्धांत पर 1970 में जापान के हवाई द्वीप में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई।
3: लेकिन इस विधि में ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्री जल में न्यूनतम तापमान अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
0: लगता है भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा।
4: हाँ मानव, जीवाश्म ईंधन की समाप्ति पर ये अक्षय स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
5: अरे अभी समुद्र के ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं हुए, आगे भी तो है। चलो चलो देखते हैं।
1: अरे वाह, देखो देखो मानव, यहाँ देखो,
2: यहाँ समुद्री धाराओं और तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से भी विद्युत निर्माण की जानकारी दी गई है।
3: समुद्री जल की लवणता में भिन्नता से भी ऊर्जा उत्पादन के बारे में अब इस चित्र में बताया गया है, देखो मानव।
0: हाँ, और हमारी टीचर ने भी बताया था कि विश्व के सभी समुद्रों में लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
4: वाह शाबाश बेटा, तू जरूर हमारा नाम रोशन करेगा एक दिन।
5: रोशनी करेगा मम्मी, पर अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर।
1: अरे बेटा तू बहुत तंग कर दी।
4: लगता है हम प्रदर्शनी के आखिरी हिस्से में हैं।
1: तुमने सांस तो बहुत लंबी ली, ऐसा लगता है थक गई हो तुम वसुधा।
2: देखो यहाँ चित्रों में गैस हाइड्रेट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि हाइड्रेट की खोज महान वैज्ञानिक हम्पी डेवी ने सन 1811 में की।
3: वैसे प्रकृति में हाइड्रेट तो अनेक रूपों में मिलते हैं, लेकिन समुद्री तलछटों में पाए जाने वाले मीथेन हाइड्रेट भविष्य में ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।
4: और यहाँ लिखा है कि समुद्र में हाइड्रेट की अनुमानित मात्रा कुल जीवाश्म ईंधन की मात्रा से दुगनी है।
5: और इनकी खोज सर्वप्रथम 1980 में की गई थी। आने वाले समय के लिए हाइड्रेट क्षेत्रों को ऊर्जा भंडार के रूप में देखा जा रहा है।
0: भैया अभी तक कितने गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है?
3: मानव अभी तक विश्व में 77 गैस हाइड्रेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: और देखो यहाँ इस लेख में समुद्र में इन स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। देखो देखो
3: यहाँ वेधन या ड्रिलिंग और पनडुब्बियों की जानकारी दी गई है, जो समुद्री खजानों यानी समुद्र के संसाधनों की खोज और शोध करते हैं।
5: भैया भारत के सागर कन्या यान भी तो ऐसा ही काम कर रही है।
3: हाँ सृष्टि बिल्कुल ठीक, सागर कन्या समुद्री क्षेत्र में खोज व अन्वेषण का काम भी करती है। ये समुद्र विज्ञान से संबंधित चलती फिरती प्रयोगशाला है।
1: भाई अब तो शाम हो गई, अब घर चलें।
5: चलते हैं।
0: मम्मी आज हमने सागर के खजाने के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। मुझे तो लगता था कि समुद्र से केवल नमक ही मिलता है।
3: मानव शुक्र है तुम्हें इतना तो पता था।
5: बाहर तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
3: बारिश हो गई और ये वर्षा भी तो समुद्र के कारण ही मिलती है।
2: हाँ बच्चों, जब सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तब बादल बनते हैं।
3: और ये बादल हवा के बहाव के साथ विभिन्न स्थानों पर वर्षा करते हैं।
0: और हवाएं भी कितनी तरह की होती है ना, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाएं, जेट स्ट्रीम आदि।
3: मानव जेट हवाएं वायुयानों को उड़ने में मददगार हैं और व्यापारिक हवाएं समुद्र में पानी के जहाजों को गति करने में सहायक होती हैं।
0: भैया, हवाओं के चलने से हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान भी तो आते हैं ना?
4: मानव, हवाएं केवल तूफान ही पैदा नहीं करती, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है।
0: बिजली, और वो भी हवाओं से? ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है।
3: सच में पढ़ा है तुमने?
0: जी हाँ, पढ़ा है।
3: अच्छा। मानव, हाल ही के दिनों में पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनकर उभर रही है। इसमें हवा की शक्ति से टरबाइनों को घुमाकर बिजली बनाई जाती है।
4: वैसे भी मानव बेटा, वायुमंडल और समुद्र तो हमारी धरती पर जीवन की निशानी है।
3: धरती का मौसम भी तो वायुमंडल और समुद्री प्रक्रियाओं पर काफी हद तक निर्भर होता है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की देन हुआ ना।
1: हाँ। और बच्चों, आजकल कई देशों में मौसम पूर्वानुमान तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय बन रहा है, तो ये भी एक तरह से समुद्र की ही देन है।
4: अरे अरे बच्चों, तुमने बारिश की बात की थी ना, देखो तो अब बिन मौसम ही बरसात होने लगी है।
0: बारिश।
5: मानव, तू सुबह से नहाया नहीं ना, इसीलिए तुझे नहलाने के लिए बारिश हो रही है।
4: चलो
0: लेकिन मम्मी, मेरी थाली में नमक मत रखना।
5: क्या हुआ मानव, पहले तुम थाली में चम्मच भरकर नमक रखने को कहते थे
3: और उसे वैसे ही छोड़ देते थे।
1: अरे बेटा, आज कहीं तुमने किसी से ये तो नहीं सुन लिया कि जितना नमक बर्बाद करोगे अगले जन्म में उतना ही आँखों की पलकों से उठाना पड़ेगा?
4: नहीं जी, मेरा बेटा ऐसी रूढ़ियों को थोड़ा ही मानता है।
1: चलो, अच्छा नहीं मानता तो।
5: तो फिर क्या बात है, आज मानव नमक की कद्र कैसे करने लग गया?
4: जरूर इस बात का संबंध समुद्र के खजाने वाली प्रदर्शनी से है।
1: ओ, क्यों मानव, क्या यह बात सही है?
0: हाँ पापा, आज प्रदर्शनी देखकर मुझे समझ आ गया कि प्रत्येक तत्व, चाहे वो नमक हो या हीरे मोती, प्रकृति में सभी की अहमियत है। इसीलिए हमें पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ही करना चाहिए, क्योंकि इनके उचित उपयोग में ही हम सब की भलाई है।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हमारा मानव तो प्रकृति के संसाधनों के उचित उपयोग की बात समझ गया। अब जल्द ही सभी मानव इस बात को समझ जाएं तो पृथ्वी पर जीवन सदा मुस्कुराता रहेगा।
3: क्या बात है, क्या
0: पर बात पापा है? मैं तो तभी मुस्कुराऊंगा जब मैं खाना खाऊंगा, तो शुरू करें।
3: <शुरू करे। laughs>

0: धरती मेरी धरती अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 26वीं कड़ी सुन रहे थे, समुद्र का खजाना।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaste class. TB को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह कि बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
2: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Soro Sharda.
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूं RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट्स सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111 6666 पर संपर्क करें।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: आइए जानते हैं माहवारी अनियमितताओं के बारे में। अगर आप गर्भवती नहीं हैं और आपकी माहवारी 3 या उससे अधिक महीने तक नहीं आती है,
2: अचानक से आपका मासिक धर्म अनियमित हो गया है,
1: आपकी माहवारी 7 दिनों से अधिक समय तक चलती है,
2: आपको हर घंटे या 2 घंटे पर पैड या टैम्पोन बदलने की जरूरत पड़ती है,
1: माहवारी के दौरान आप बहुत अधिक दर्द का सामना करती हैं,
2: आपका मासिक चक्र न्यूनतम 21 दिन और अधिकतम 35 दिनों से अलग है,
1: आप माहवारी के दौरान स्पॉटिंग का अनुभव करती हैं,
2: आप माहवारी के दौरान अन्य लक्षणों जैसे सामान्य रक्त स्त्राव या बुखार का अनुभव करती हैं,
1: तो आपको उपचार के लिए फौरन नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करना चाहिए।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।